नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम लम्हे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटल हेल्थ। हेल्थी फूड्स मानसिक सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं, जाने मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट फूड्स। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका असर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। खाने का असर शारीरिक के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य और हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन एक दूसरे से संबंधित होता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भोजन खाने की जरूरत होती है। संतुलित भोजन हमारे शरीर के विकास, रखरखाव और इम्यून सिस्टम के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना ध्यान देना चाहिए। आज के समय में हमारे सामने कई ऐसे लोग आते हैं जो फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन में जरूरी समझते हैं। वे स्वास्थ्य शरीर को बनाए रखने के लिए हर रोज व्यायाम करते हैं, लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंधी का उनके पता नहीं। लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध का उनको पता नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य को शामिल किए बिना शरीर की फिटनेस नहीं हो सकती है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी फूड्स और डाइट मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़े होते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होता है। जब हम अच्छा खाते हैं तो उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं जो हमारे शरीर को रोग से लड़ने में मदद करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में फाइबर, मिनरल्स, अल्फा लिनोलिक एसिड और विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन के भी होता है। विटामिन के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये एसिड्स हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। फ्रूट जैसे बेरीज और जामुनों का सेवन हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद हो सकता है। बेरीज और जामुन दिमाग की काम करने की शक्ति को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। शोध के मुताबिक जो लोग हर रोज फ्रूट खाते हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बहुत से फलों में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट से हमारा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। अखरोट यानी वॉलनट में फैटी फिश की तरह ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। बादाम में विटामिन ई भी पाया जाता है जो हमारी याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। मानसिक और भावनात्मक हेल्थ की बात करें तो भोजन सबसे अधिक अंधे की पहलुओं में से एक है। लेकिन सच्चाई यह है कि हेल्थी डाइट के बिना आप

अपने शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख सकते हैं। भोजन शरीर को विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन आदि जैसे हेल्थी पोषक तत्व प्रदान करता है जो ठीक से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। कई शोध से ये बात साबित हुई है कि एक पौष्टिक आहार से कई तरीकों से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। फ्रूट्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स तनाव और शरीर की सूजन से लड़ने वाले सुपर पोषक तत्व है। ये ताजे और कलरफुल फ्रूट्स और सब्जियों में पाई जाती है, जैसे कि जामुन, स्ट्रॉबेरीज, नट्स एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, डू यू नो गट इज अ सेकेंड ब्रेन। पेट को बॉडी के दूसरा ब्रेन के रूप में जाना जाता है। इसका नेटवर्क और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एक हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करता है। मजबूत इम्यूनिटी के निर्माण और ब्रेन को बॉडी की जरूरत का संकेत भोजन के रूप में काम करने के लिए संकेत भेजता है। प्रोबायोटिक्स जैसे दही, केफिर, कम्बुचा, किमची आदि अच्छे बैक्टीरिया है जो डाइजेशन, आंतों को साफ करना और पेट को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। जब आपकी आंत स्वस्थ होती है तो ब्रेन को विश्राम, निराश और खुश होने के संकेत मिलते हैं। ये बॉडी की सूजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत भी करता है। एक्टिव और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए भोजन मानसिक हेल्थ को बढ़ाए देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। भोजन में पोषण से ब्रेन को जरूरी ईंधन मिलता है और प्रभावी रूप से और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ब्रेन के अनुकूल डाइट लें। दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी को ये जरूर कहा होगा, दिमाग खराब हो गया है क्या? अक्सर लोग ऐसी बात को बहुत हल्के में कह देते हैं, लेकिन ये महज एक बात नहीं, आप जाने अनजाने में मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। कोविड के बाद से ये मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दे को लेकर थोड़ी गंभीरता बढ़ी है, लेकिन अभी भी इन चीजों की कई लोग ध्यान देना जरूरी नहीं समझते हैं। ऐसे में हम आपके लिए दिमाग को हेल्थी और बीमारियों से दूर रखने के उपाय बता रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य में आपका भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होते हैं। ये प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। इसके अलावा ये भी निर्धारित करने में मदद करता है कि एक तनाव को कैसे संभालते हैं, दूसरे को प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करते हैं और चुनाव करते हैं। बचपन और किशोरावस्था से वयस्कता तक जीवन का हर चरण में मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, विटामिन बी बहुत जरूरी है। ये 8 अलग अलग पोषक तत्वों का एक समूह है। विशेष रूप से B6, B9, फोलिक एसिड और B12 शामिल है। ये तंत्रिका तंत्रों को समुचित कार्य के लिए आवश्यक है और चिंता को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। पिछले एक दशक के डेटा पर ध्यान दिया जाए तो इससे पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर मानसिक समस्याओं का जोखिम काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चे और युवाओं में भी इसका खतरा बढ़ रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ का कहना है कि महामारी के बाद से जिस तरह से लोगों में चिंता, अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम देखा जा रहा है, इसको लेकर सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर का कल्पना नहीं की जा सकता है। तो दोस्तों, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे चेतन के साथ। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI टेक्नीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: लम्हे स्पॉन्सर्ड परिपाटी വെള്ളി, ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:45.
2: ഏഴ് സുന്ദര രാത്രികൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനം കേൾക്കാം. ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ റഫീഖ് അഹമ്മദ്, സംഗീതം പ്രശാന്ത് പിള്ളൈ, പാടിയത് ഹരിചരൺ, ഗായത്രി അശോകൻ.

0: क्या बात है। पृथ्वी वल्लभ फिल्म की सुंदर से रचना से वो जमाना आंखों के सामने तैर गया। मनीषा जी, वास्तव में दुर्गा खुटी जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 26 वर्ष की उम्र में ही संघर्ष शुरू हुआ और उन्होंने धीरे धीरे अभिनय करना शुरू किया। 1931 में पहली फिल्म उन्हें मिली
1: फरेबी जाल
0: जी, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। 1932 में उनकी फिल्म आई माया मच्छिंद्र, और ये वो जमाना था जब पुरुष जो है स्त्री भूमिकाएं करते थे,
1: यानी उस समय बहुत संघर्ष था एक अभिनेत्री के लिए अपनी जगह बनाना।
0: बिल्कुल, और ये संघर्ष उनके लिए कई मामलों में आगे जारी रहा। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई आगे जाकर के,
1: क्या बात,
0: फिल्म का निर्देशन भी किया
1: जी।
0: मगर उससे पहले बता दें श्रोताओं को कि 1932 में एक फिल्म आई थी जो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी थी, अयोध्या राजा, यानी अयोध्या का राजा, और इस फिल्म में वो हमें सीता के रूप में दिखाई दी।
1: एक बात हम अपने श्रोताओं को जरूर बताएंगे कि प्रभात कंपनी से जुड़ी रही बहुत दिनों तक दुर्गा खोटे जी, लेकिन जैसा कि नाम है ना, उसी में ही शक्ति छुपी हुई है।
0: जी, जी,
1: और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं संघर्ष की, तो जो संघर्ष करने वाली स्त्री होती है ना, वो मूलतः कई मामलों में बहुत एंटरप्रेन्योरशिप भी होती
0: बिल्कुल,
1: है, यानी उनके अंदर बहुत नया कुछ करने का जज्बा था, इसलिए उन्होंने प्रभात कंपनी को बाद में छोड़ दिया और फ्रीलांसिंग करने लगी। और तो और उन्होंने बाद में अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी स्थापित की थी।
0: जी बिल्कुल, ये जो व्यक्तित्व उनका था एक बिजली की तरह था।
1: हाँ।
0: मेरा इशारा है उनकी एक फिल्म की तरफ जिसका नाम था सौदा मिली।
1: जी हाँ।
0: आगे उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई और उसका निर्देशन भी किया, उस फिल्म का नाम है साथी, जो बनी 1937 में।
1: उसके बाद आती है चरणों की दासी और भरत मिलाप 1947 में। इसके अलावा हम अपने श्रोताओं को और बताना चाहेंगे कि आप इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन से जुड़ी रही।
0: जी, साथ ही आप मुंबई मराठी साहित्य संघ की भी एक क्रियाशील एक्टिव मेंबर थी।
1: देखिए, ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी दुर्गा खोटे जी को हम बहुत श्रद्धा से स्मरण कर रहे हैं। 22 सितंबर उनका स्मृति दिवस है
0: जी।
1: तो एक विशेष रिकॉर्डिंग अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं जो हमारे संग्रहालय से हम चुनकर लाए हैं।
0: अवश्य, और इस साक्षात्कार में दुर्गा जी से बातचीत की है मधुप शर्मा जी ने।
2: दुर्गा जी, आपकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी?
3: फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो प्रभात की हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, ये मेरी पहली फिल्म थी। लेकिन उससे पहले मैंने श्री भवनानी की एक पिक्चर में छोटा सा काम किया था
2: जी। तो ये टॉकी पिक्चर थी?
3: हाँ, वो टॉकी के शुरू का जमाना था और 1930 की बात है ये।
2: अच्छा, उस जमाने में तो कलाकार अपने अपने गीत भी गाया करते थे, आशा है आप भी गाती होंगी जरूर।
3: हाँ, मैं गाने से बहुत शौक रखती थी। असल में मैंने विलायत खान साहब से तालीम भी ली थी 3-4 साल
2: जी।
3: और उस जमाने में आर्टिस्ट अपने अपने गाने गाया करते थे, प्लेबैक का तो कोई सिलसिला था ही नहीं उस पर, और आर्टिस्टों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे ड्रामा में अपने गाने का रिहर्सल करते हैं, उसी हिसाब से फिल्मों के गाने रिहर्स करते थे और वो गाया जाते थे डायरेक्टली।
2: तो इस लंबे अरसे में आपने हर तरह के अभिनय किए होंगे।
3: हाँ।
2: लेकिन फिर भी कुछ खास पसंद है आपकी?
3: मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे हर किस्म के रोल्स करने मिले
2: जी।
3: असल में मैंने जो रोल्स किए वो मैंने इसलिए किए क्योंकि मुझे वो स्टोरी पसंद थी, वो रोल पसंद था। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि मुझे कौन सा रोल ज्यादा पसंद था। मैं कहीं परमानेंट आर्टिस्ट तो रही नहीं, और अगर मुझे कोई स्टोरी पसंद नहीं आई तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि भाई ये काम मुझसे नहीं होगा। इसलिए मुझे इत्तेफाक से हर किस्म के रोल्स मिले, कुछ कॉमेडी के मिले, कुछ ट्रेजेडी के मिले, कुछ वीरता के मिले, कुछ जैसे घरेलू मिले। कुछ लोग कहते हैं कि चरणों की दासी में जो सास का पार्ट मैंने किया था वो तो बिल्कुल ही कमाल था, हालांकि मैं वैसी नहीं हूँ, बिल्कुल झगड़ेलू नहीं। मैं आपको
2: उसमें झगड़ेलू सास का था।
3: ओहो, बहुत ही इतना था कि जब मेरी बहू आई, मेरे लड़के की शादी हुई, मेरी बहू जब आई और उन्होंने पिक्चर देखी तो वो कहने लगी, हे भगवान, अगर ये पिक्चर मैं पहले देखती तो मैं कभी आगे रह के शादी नहीं करती।
2: अच्छा, अभिनय से फुर्सत होती है तो आप अपना समय किस तरह बिताना पसंद करती हैं ज्यादा?

हमेशा आगे ही बढ़ता रहा। वो लाइनें लिखी हुई हैं हमारे फिरा गोरुपुरी साहब की, लाइनें हैं, उठो भी के अब दिन हैं बदलने वाले, उठो भी के अब दिन हैं बदलने वाले, मंजिल पे पहुंच जाएंगे चलने वाले, दीपक के लिए हट है पतंगे न कर, बे आग भी जल जाते हैं जलने वाले। ये लाइनें आपने, मैं समझता हूं कि जरूर बड़े ध्यान से सुनी होंगी, और इन लाइनों में जो छुपी हुई बात है उसको भी आपने जरूर समझा होगा, क्योंकि ये लाइनें मैं समझता हूं कि मेरे जीवन को बदलने में बहुत ही मेरा साथ दिया। मैं आपको एक बात बताता हूं, जबकि मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था और जब कोई 6-7 साल का था तब मैंने वहां से नाटकों में काम करना शुरू किया, और जब बम्बई आया तो यहां मैंने श्री बल्ला साहनी की फिल्म देखी धोबी का जमीन, जिसे स्वर्गीय बिमलाई जी ने डायरेक्ट किया था। उस फिल्म में जो मैं गया उसमें जो गाना था उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी, जिसके बोल हैं कुछ तो निशानी छोड़ जा।

0: बेसिकली मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ और थिएटर में मुझे कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए जिनमें से मैं एक छोटा सा अनुभव आपको बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं अपनी पत्नी को नाटक दिखाने ले गया और नाटक में मैं हीरो था जिसमें मेरी पत्नी होती है, एक बच्चा होता है जिसका नाम विनोद होता है और कुछ ऐसे सीन थे उसके अंदर कि जहाँ रोमांटिक सीन, मेरी बीवी रोती है धोती है और मैंने वो किरदार, वो रोल इतनी ईमानदारी से निभाया कि शायद मेरी पत्नी को इस बात का बुरा लगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैं घर पहुंचा और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मुझे एक गिलास पानी दीजिए, तो मेरी पत्नी बहुत जोर से चिल्लाई और एकदम गुस्से में कहा कि जाइए पानी विनोद की माँ से ले लीजिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने उठाकर बहुत गहरे समंदर में फेंक दिया हो और मैं चिल्ला रहा हूँ कि अरे मुझे बचाओ, मुझे निकालो इससे, लेकिन कोई मल्ला, कोई माझी मुझे निकालने वाला नहीं आया और मैं, अब यकीन मानिए, एक महीना तक उस घर के झगड़े में पड़ा रहा जिससे कि मैं समझता हूँ कि काफी मेंटली मुझे परेशानी हुई।
1: अरे माझी, अरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है।

मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ अपनी एक फिल्म की। फिल्म का नाम था कुली, मनमोहन देसाई जी उसके डायरेक्टर थे। तो एक सीन आता है कि हमारी पिक्चर का विलन हमारे डैम को जहाँ मैं काम कर रहा होता हूँ उसका कुछ पुर्जा ऐसा खोलता है कि तेज बहाव में पानी बहता है और जिसमें हमारा गाँव भी बह जाता है और मैं भी बह जाता हूँ। तो मनमोहन जी को शॉट लेना था कि मैं नदी में मेरी लाश बहती हुई आ रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, उन दिनों बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और नदी का जो बहाव था बहुत ही जोरों पर था। तो मनमोहन जी मुझे बताने लगे, भाई सत्येन कपूर जी आपको वहां से कूदना है और यहां से आपकी लाश गुजरेगी और हम बीच में जहां कैमरा हमें जूम करना है हम करेंगे। मैंने कहा जी बेहतर है। तो मुझे कहा रेडी? मैंने कहा जी हां रेडी। तो जैसे उन्होंने एक्शन कहा तो इतने में वहां गांव की एक औरत बैठी हुई थी, मुझे कहने लगी ना ना ना साहब इधर मत कूदिए, यहां हर साल हमारी देवी बलि लेती है। खैर मुझे उस वक्त कुछ सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि एक्शन बोल चुके थे मनमोहन जी और मैं भगवान का नाम लेकर नदी में थार से कूद पड़ा और बिल्कुल मैं तो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था, बिल्कुल लाश की तरह पड़ा हुआ था। एक जगह आकर के एक मकान पे आकर के मेरी लाश कर लगाने के बाद में वो नदी के बहाव में आगे निकल गई। इतने में हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला कट, शॉट ओके हो गया, मैं बाहर आया। तो गांव के एक आदमी ने कहा कि भाई साहब एक मिनट सुनिए, बोले जहां आपकी लाश घूमी थी ना वहां पर एक भंवर है, कुआं है, आप बच गए। आप यकीन मानिए मेरे पांव के नीचे से धरती निकल गई। वो जो जितने भी सेकंड गुजरे मुझ पे वो मैं जानता हूँ कि किस तरह गुजरे होंगे और मुझे अभी एहसास हुआ कि एक नई जिंदगी मिली मुझे। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं थिएटर से वास्ता रखता हूँ और हम थिएटर के कलाकारों की जिंदगी बड़ी अजीब सी होती है। एक्टिंग के साथ साथ कुछ घर की परेशानियां भी होती हैं, उलझने भी होती हैं। मुझे एक अपनी जिंदगी का एक हादसा याद आ रहा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। हम जो हिंदी थिएटर करते थे, घर घर जाके टिकट बेचना, तीन तीन महीने एक ड्रामे की रिहर्सल करना, उसके बाद शो करना, तो ये काम बहुत ही मुश्किल था। एक प्ले था जिसकी मैं रिहर्सल कर रहा था दो या तीन महीने से और रिहर्सल करके एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो भाई साहब ने कहा कि भाई पानीपत से टेलीग्राम आया है, तुम्हारे छोटे बच्चे का स्वर्गवास हो गया है और तुम पानीपत चले जाओ। मैंने कहा नहीं भाई साहब, बड़ी मेहनत करके हमने ड्रामा तैयार किया है और कल उसका शो होने वाला है, सो मैं शो छोड़ के नहीं जा सकता। कि शो मस्ट गो ऑन, ड्रामा नहीं रुकेगा। खैर मेरे घर पे जो बीती, मेरे परिवार पे जो बीती वो मैं जानता हूँ और हमने शो किया और इसी पर मुझे स्वर्गीय नरगिस भाभी की फिल्म मदर इंडिया का एक गाना याद आ रहा है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।

0: सतीन कप्पू जी की आवाज हमने सुने
1: जी,
0: और एक बार फिर जो हमारी स्मृतियां हैं वो उन्हीं गलियारों में घूम गई जब 80 के दशक तक वो बहुत सक्रिय रहे और उनकी आवाज सुनकर बड़ा अच्छा भी लगा। उनके द्वारा ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने अपने पसंद के गीत भी सुनवाए थे।
2: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
3: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई है। ये पुरस्कार तीन वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 AD को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था,
2: वो शक्ति वापस आ गई है।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंदकिशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें ये पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए ये पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट टू के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक

योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी भस्कर के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जीवी प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा।

0: 74वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म आंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई।
1: नानु दट्ट अयोग्य।
0: आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागर कट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
2: सरकार को कुछ होने क्या
3: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
2: नहीं मालूम कहाँ गया माटी मिला
3: मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है चाहे वो रंग जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुडी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंत नाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंत नाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म केजीएफ में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
4: गरुड़न नोड़दागा रॉकेट कन्फर्म आयतु। हियर इज अ मैन हू कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस। अदक्के अवकाश इद्दरू अवनन्नु मुगिसाकलिल्ल।
0: अनंत नाग ने ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आनंद इंगलागी का किरदार निभाया था। दरअसल ये किरदार फिल्म का सूत्रधार भी है। हिंदी में अनंत नाग अंकुर भूमिका कालीचरण और जुर्म जैसी फिल्मों में नजर आए हैं। सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2025 में अनंत नाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां। ये था संपादकीय अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।

0: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहानुल मुल्क के रिश्तेदार के नगर पोते मीर रोशन अली में
1: जरा होश में आइए हुजूर जरा। हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए यहाँ से भाग निकलते हैं।
2: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी। कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गईं। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: क्या नाम है तेरा?
2: कमली।
1: कमली, बड़ा प्यारा नाम है।
2: मेरा नाम नंदू है।
1: अच्छा नाम है ना?
3: और बारे पुत्रा तेरी?
1: चल, तू इधर रोज आती है?
2: हाँ।
1: कल आना, मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
2: अच्छा, मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना। कमली, गल सुन।
2: क्या?
1: तेरी कोमाई हो गई?
0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बीआर चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

0: आयो दे संदेश वाकी चल आज देश वाकियो।
1: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वर नाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
2: एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा?
3: नहीं, बोलो।
2: बात यह है, मेले में चोर पॉकेटमार बहुत आते हैं।
3: सो तो आते हैं फिर।
2: और देखिए, मैं बहुत

0: गरीब आदमी हूँ, 1600 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
1: अगर मैं मार लूँ तो?
2: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: मजब हो गया।
4: क्या हुआ?
3: आज वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
4: खेल रहे हैं?
3: शतरंज मिर्जा साहब के साथ। इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली। अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया।
4: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
4: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
3: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
2: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा, साल था 1974।
5: यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में।
2: कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
6: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
2: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजाबाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए, संगीतकार थे हंस राज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत गाए।

0: उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान के लिए और फिल्म इजाजत के लिए
1: मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा।
0: साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते, लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी के बिल्कुल जबरदस्त फैन के मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आ चल से

0: प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है। मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया। उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब। या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे। बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का, वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने। तो तब दिनकर अम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा अरे ये दिना की लड़की है। ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 4 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था, लाल लाइट, कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था। पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों इशारों, हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त, वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है। तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी के, जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं। फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजा मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे। तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताऊं, मैं जाती थी बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, किस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे। इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे, बड़ा स्टूडियो है, वहाँ सेट लगा हुआ है और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है, छोटा सा गंदा सा छोटा सा तालाब को बड़ा दिखाते थे। तो ऐसी ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे, पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया, काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ही है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए। वर्गो हूँ, वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत होती है 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरेली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वहीं रहती
1: जी।
0: मुझे इन चीजों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीजों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की जरूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम हो
1: जी।
0: पलंग हो, इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहाँ आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती, क्योंकि इंसान جو سپنوں پہ جیتا ہے اس کو کوئی بھی جگہ چلتا ہے. میں سپنے میں جینے والی عورت ہوں, میں ہر میں بیٹھی ہوں, میں اپنے سپنوں میں رہتی ہوں, اپنے خواب میں رہتی ہوں. کوئی بھی خواب میرے کو چلتا ہے اسی میں میں بہتی جاتی ہوں. کیسے نکل گیا دن مجھے پتا نہیں لگتا. پھر میں خود ہی سوچتی اور بھاستی ہوں, پاگل نہیں ہوں میں, کتنی دیر سے کیا سوچ رہی ہوں.

0: स्मृति शेष स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।

0: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी।
1: ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल।
0: कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कंची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: तो अब हमारे पास वक्त नहीं है जयंत जी कि आज हम विविधा में कुछ और सुनवाएं, समय की सीमा है, हम अपनी श्रोताओं से अब अनुमति ले।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अगले संस्करण तक हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
0: और मनीषा जैन का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: फिल्म सड़क से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा, नदीम श्रवण का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।

0: दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द। इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल विविध भारती से।

0: केके को आप सुन रहे थे फिल्म जिस्म। सईद कादरी ने इस गीत को लिखा।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आज इस सफर में आपकी साथी अनुराधा उपाध्याय। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। देखते हैं आपके गीतों की लिस्ट हमारी लिस्ट से कितनी ज्यादा मिलती जुलती है, और अगर ना भी मिले तो भी आप गीत कमेंट्स में लिख सकते हैं, हो सकता है वो गीत आज इस प्रोग्राम में हम शामिल कर लें। दोस्तों, आपके प्यार भरे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं कमेंट्स के जरिए और उन्हें भी पढ़ते हैं, साथ ही गीतों का सफर भी शुरू करते हैं। लेकिन उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने आज की इबारत या टेक्स्ट नहीं पढ़ी है, हम एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इबारत यानी कि टेक्स्ट कुछ इस प्रकार था। शाम का वक्त था, आसमान हल्का नीला था और दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। अचानक उसकी नजर ठहरी एक लड़की पर जो शाम के उन रंगों को निहार रही थी। उसने कुछ सोचा और आखिरकार पूछा, इतनी देर से आप यहां अकेली क्यों हैं? वो मुस्कुरा दी और कहा, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो शरारत से बोला, अच्छा, और अगर मैं नहीं आता? जवाब मिला, तो शायद ये दीवाना दिल तुम्हें ढूंढने निकल पड़ता। उसे देखकर उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, ये लड़की जाने कैसी है दीवानी। दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे। सामने दूर तक फैली हंसी वादियां और खिला हुआ आसमान जैसे उन्हें किसी अनजान सफर के लिए बुला रहे थे। उसने अचानक कहा, चलो कहीं दूर निकल चलते हैं। कहां? जहां कोई हमें पहचानता ना हो, जहां बस बातें हों, रास्ते हों और ये खुला आसमान। पहाड़ी रास्तों से होते हुए कुछ दूर जाकर दोनों एक छोटी सी पहाड़ी पर रुक गए। नीचे घाटी में शाम उतर रही थी। वो चुपचाप आसमान को देखने लगी। उसने पूछा, भरोसा है मुझ पर? जवाब आया, दिल का एतबार क्या कीजिए। उस पल कोई इजहार नहीं हुआ, लेकिन शायद दोनों समझ गए थे। उसने पूछा, अगर कभी हमारी कहानी लिखी जाए तो कहां से शुरू होगी? जवाब आया, तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम से खत्म। दूर आसमान में बादल चांद के सामने से गुजर रहे थे। उस रात जब वे वापस लौटे तो दोनों के पास कोई बड़ा वादा नहीं था, बस एक एहसास था कि जिंदगी की भीड़ में कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है जिसके साथ एक साधारण सा रास्ता भी खूबसूरत सफर बन जाता है, और शायद यही मोहब्बत है, जहां कहानी किसी तारीख से नहीं किसी नाम से शुरू होती है। तो ये थी आज की इबारत जो कि फेसबुक पोस्ट पर भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, और आपके संदेशों का इंतजार मुझे रहेगा।

लव स्टोरी फिल्म से गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। और आपके संदेश भी हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों के सफर के साथ शाम की सुहानी बातें होंगी और कुछ शामें दिल में उतर जाती है। विविध भारती जब शाम को नए पुराने गीत सुनाता है तो वे शामें अद्भुत हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।

एक और श्रोता लिखते हैं, जिंदगी का सफर हो या रास्ते का, यदि हम सफर अच्छा हो तो रास्ता बड़ी आसानी से कट जाता है। वो दूर से उगता हुआ सूर्य, नीला आसमान, पहाड़, नदी और शाम को ढलता हुआ सूरज और बाद में चांद, ये सब प्रकृति के नजारे बेहद खूबसूरत हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं, शाम ढली तो कोई ख्वाब सा मिला, राहों में जैसे कोई जवाब सा मिला, न वादा हुआ न इजहार की बात, बस साथ चला कोई और सफर खास हो गया। बिल्कुल, हमारा सफर भी एकदम खास हो जाता है जब आपके मैसेजेस, आपके संदेश हम तक पहुंचते हैं, आप अपनी बात हम तक रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर में एक लड़की और एक अनजाने व्यक्ति के अचानक मिलने और साथ में पहाड़ों और नदी के वातावरण में साथ साथ सफर करने की बात कही गई है और एक दूसरे को याद रखने की कहानी लिखी गई है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी जिंदगी में कोई यूं ही मिल जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब उसके साथ बिताया एक छोटा सा पल यादों का खूबसूरत हिस्सा बन गया। न कोई बड़ा वादा, न कोई लंबी कहानी, बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा एतबार और साथ चलते हुए दिल का मुस्कुरा देना, शायद यही तो सच्चा प्यार होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में इंतजार और दीवानापन, दिल दीवाना और उनकी मोहब्बत जैसा कुछ उन्हें लग रहा है, इसी तरह के गीत आज के इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। बिल्कुल, और आज की इबारत का संदेश यह है कि साथी मनचाहा हो तो सफर कितना भी कठिन हो आसानी से कट जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल आसानी से कट जाता है और पता भी नहीं चलता आपके इन संदेशों के बीच और प्यारे प्यारे गीतों के बीच। गीतों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन साथ ही एक सवाल, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन रविवार, तो आज का दिन आप कैसे बिता रहे हैं? एक तरीका तो ये होता है कि सारे घर के काम आज के लिए निकाल लिए जाएं, पेंडिंग वर्क जिसे कहते हैं, जो कुछ नहीं किया, जो वक्त नहीं मिला पूरे हफ्ते करने का, वो आज के दिन निपटाया जाए। और एक तरीका ये होता है कि आराम से चाय की चुस्कियों के साथ, अच्छे गीतों के साथ आराम से बैठा जाए, सिर्फ आराम आराम और आराम किया जाए। तो आप किस तरफ आते हैं, आज का ये जो दिन है किस तरह से बिता रहे हैं, जरा साझा कीजिए अपने संदेशों के जरिए, अच्छा लगेगा हमें पढ़कर। आपके संदेशों का इंतजार और साथ ही ये गीत।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से अभी आपने सुना शैलेंद्र ने से लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरीला सफर मेरे यानी अनुराधा के संग और आपके संदेश हम तक पहुँच चुके हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज संडे छुट्टी का दिन, सुबह सुबह ही होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धर्मपत्नी के ने घर के सामान की लिस्ट हमें थमा दी और वो संडे का इंतजार कर रही थी। मैंने भी शरारत से पूछा कि अच्छा मैं मना कर दूं, तो धर्मपत्नी मुस्कुराई और मैं मान गया। और अब वो मंडी में सब्जियां भी ले रहे हैं, फ्रूट भी ले रहे हैं और सामान भी लेने का इरादा है और साथ ही अदरक इलायची वाली चाय पीते हुए रेडियो पर सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। क्या बात है, इससे अच्छा संडे और कैसे मन सकता है, आप बताइए। एक और श्रोता लिखते हैं कि क्रिकेट मैच को छोड़कर सुरीला सफर का आनंद लिया जा रहा है और हर रोज का नाता जो है सुरीला सफर से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा भी कुछ इसी तरह का नाता है आप सब से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आराम से लेटे हुए गीतों का मजा ले रहे हैं और बस सुबह से ही सारे प्रोग्राम हम सुन रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम घर पर बैठे हैं और बुजुर्गों का समय तो घर के छोटे बच्चों के साथ इतवार के दिन अच्छे से निकल जाता है क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है, बाकी समय गुजारने के लिए विविध भारती का साथ रहता ही है और हम काफी सारे प्रोग्राम सुनते हैं, ऐसे ही अपना इतवार भी निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि अब वो रिटायर्ड हैं तो रविवार हो या सोमवार सभी छुट्टी के दिन एक जैसे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि प्यार आदमी को जिम्मेदारी का हिस्सा बना देता है। जी हाँ बिल्कुल, और आज के दिन आराम से समय सुरीला सफर के गीत सुन रहे हैं और ये जो गीत है दीवाने का नाम ना पूछो अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए और कुछ दिलचस्प संदेशों का इंतजार कर रही हूं मैं कि किस तरह से इतवार का दिन निकलता है, आज क्या कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी दिन

आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम संडे को भी छुट्टी नहीं रखते, काम तो चालू रहता है और साथ में विविध भारती हो तो बोर होने का वक्त ही नहीं रहता। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विविध भारती के साथ जुड़े हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन छुट्टी जरूर बनती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सात गीतों की फेहरिस्त में ये जो है चौथे नंबर का गीत शामिल हुआ है, क्या मौसम है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं तो सुबह से ही सोच रही थी कि आज संडे है, आराम से काम करूंगी, लेकिन अचानक पतिदेव की जरूरी मीटिंग आ गई और फिर वही जल्दी जल्दी काम में जुट गई, लेकिन नो टेंशन, विविध भारती है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इन श्रोता का। एक और श्रोता लिखते हैं कि इतवार के दिन तो सभी की छुट्टी होती है, तो जो हमारी हेल्पर है आज उसके बच्चों की छुट्टियां भी रहती है, बस वो भी आज छुट्टी पर ही है। काम थोड़ा बढ़ गया है लेकिन इत्मीनान से धीरे धीरे निपटाए जा रहे हैं और सुरीला सफर के साथ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत तो युवाओं को समर्पित है, क्योंकि इस कहानी में एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों अकेले में मिलते हैं और प्यार की बातें होती है, फिर वे पहाड़ों में वादियों में घूमते हैं, झरने के पास समय बिताते हैं और फिर लौट पड़ते हैं। अलग अलग दोनों को अपने घर जाने की मजबूरी है और अगले दिन फिर से मिलने का वादा करते हैं। क्या बात है, आपने तो ये कहानी लिख दी है। इबारत के बारे में एक और श्रोता लिखते हैं कि इस इबारत की खास बात यह है कि ये किसी मोड़ पर नहीं ठहरती, बल्कि एक मुलाकात से शुरू होकर एहसासों के उस मुकम्मल सफर को बयां करती है। शाम का ढलना, पहाड़ों और वादियों की बातें, दो दिलों के बीच किसी तरह का वादा न होना लेकिन विश्वास का पनपना बहुत ही खूबसूरत लगता है। जी हाँ, बिल्कुल, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। और हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में आगे अगले गीत की तरफ।

वारिस फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे। वर्मा मलिक ने इसे लिखा, उत्तम जगदीश का संगीत। आपके संदेश हम तक पहुंचे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रविवार के दिन छुट्टी होती है, सभी लोग घर पर ही होते हैं और सड़कें कुछ खाली खाली दिखाई पड़ती है। बाजारों मार्केट में कुछ भीड़भाड़ सी दिखाई देती है और ये सब देखकर लगता है कि रविवार अपनी पहचान स्वयं करवा रहा हो। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम अभी हैदराबाद में हैं, बेटिया जवाईसा के साथ हैं और यहां पर गणेश विसर्जन चल रहा है और बाद में प्रसाद भंडारा होगा और हम बस एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पर विशेष पंक्तियां, ढलती हुई शाम ने एक नया पैगाम दिया, दो अजनबी धड़कनों को एक ही नाम दिया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये भी इत्तेफाक है कि आपने जो आज सुरीला सफर प्रोग्राम में सवाल पूछा है, उसी समय और इत्तेफाक से उसी सवाल पर मैं अपना कमेंट टाइप कर चुका था और यही तो बात है। विविध भारती मुंबई से हमारी जो पहचान है, जो प्यार है, ये उसका प्रतीक है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके संदेश हम तक भेजते रहिए और बताइए कि आज का रविवार, आज का ये जो दिन है, किस तरह से बिता रहे हैं आप, या फिर क्या सोचा था और वैसा नहीं हुआ, क्या प्लानिंग थी वैसी नहीं हुई, ये भी हमें

0: भेज सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे सोमवार आने को होता है तो कैसा लगता है, क्या अभी भी ऐसा लगता है कि परीक्षा आने वाली है, अभी भी ऐसा लगता है कि स्कूल में जाना है, किस तरह के भाव आते हैं मन में, ये भी लिख सकते हैं। दिलचस्प संदेश रहेंगे तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर विविध भारती से।

फिल्म कलाकार से गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। इंदिवर ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इस गीत के बारे में बहुत से संदेश आए हैं कि ये गीत तो हमने सोचा ही था और हमारी लिस्ट से, हमारी फहरिस्त से मेल खाता है ये गीत। जी हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है आसान शब्दों में ये पता चल गया था। और वैसे भी हम भी चाहते हैं कि आपके आप जो कुछ गीत चुने वो आसानी से आपको पता चल जाए, क्योंकि हमारा मकसद तो संगीतमय सफर के साथ आपके साथ चलना है ना। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि रविवार ही क्या अपितु आने वाला हर एक पल ही नया है, ऐसी अनुभूतियों में ही रहते हैं हम और ऐसे ही जीते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हवाइन गिटार का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है नीले नीले अंबर इस गीत पर। एक और श्रोता लिखती है कि आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूं पर प्रोग्राम जरूर सुन रही हूं और आपके साथ ही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखती है कि आज की इबारत पढ़कर ऐसा लगा जैसे शाम के रंगों में कोई पुराना गीत धीरे धीरे उतर आया हो। कहीं इंतजार है, कहीं एतबार है, कहीं साथ चलने की चाह है और कहीं बिना कहे समझ लेने वाला रिश्ता। शायद मोहब्बत भी ऐसी होती है, बड़े वादों से नहीं, किसी का साथ साधारण से रास्ते को बहुत ही अच्छा, बहुत ही हसीन बना देता है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके संदेश इस सुरीला सफर को खूबसूरत बना रहे हैं। और फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ और आपके संदेशों का इंतजार है कि अब कैसा लग रहा है रविवार।

कश्मीर की गली, यह था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी इतवार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वैसे तो मैं एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूं, रिटायर्ड हूं लेकिन टायर्ड बिल्कुल नहीं हूं। इतवार का दिन मेरे लिए बड़े मायने रखता है। मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक रहा है, तो इस दिन हमारी कॉलोनी के सामने जो पार्क है वहां पर लड़के क्रिकेट खेलते हैं और बिना झिझक के मैं उनकी टोली में शामिल हो जाता हूं, खेल लेता हूं और उन्हें एहसास बिल्कुल नहीं होता कि कोई बूढ़ा हमारे साथ खेल रहा है। इस तरह मेरा इतवार बड़े मजे से गुजर जाता है। क्या बात है, ये तो सचमुच बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि घर पर ही बैठे हैं, कोई घूमने जाने को तैयार है और कोई घूमने जाने को नहीं तैयार है, शायद ऐसा ये लिखना चाह रहे थे। मौज करो, सब झूमो गाओ, आज रविवार है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती है कि विविध भारती के साथ काम काम नहीं लगता है, संगीत में एंजॉय करते हुए हम हाथ का काम कब पूरा हो जाता है, हमारे हाथ से किए हुए काम कब पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ऐसे रोज ही छुट्टी हो, काम भी हो, सब कुछ एक बराबर। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं, जैसे हफ्ते की जेब से गिरा हुआ कोई खाली लम्हा जिसे उठाकर हम थोड़ी देर अपने पास रख लेते हैं, ना कोई जल्दी ना कोई हिसाब, बस धूप चाय और खुद से मुलाकात। ये है रविवार इनके हिसाब से। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियों में आपने ये लिखा है, बहुत ही सुंदर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, ये आकाशवाणी की विविध भारती सेवा है। जब ये आवाज गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। रविवार का दिन सुकून, पुरानी यादों और अपनों के साथ फुर्सत के पल बिताने का नाम है। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर मेरा तो रविवार की सुबह की चाय की चुस्कियों और विविध भारती की सुरीली धुनों के साथ बेहद खास अंदाज में बीत रहा है। क्या बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं, बिग फैन ऑफ विविध भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन प्यार भरे संदेशों का।

लता मंगेशकर की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। और हमारे पास संदेश पहुंच चुके हैं। जी हाँ, एक संदेश यह आया है कि नीले नीले अंबर पर जो गीत अभी आपने सुनवाया कलाकार फिल्म से, उसमें जो विशेष वाद्य है दरअसल वो स्पेनिश गिटार है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का रविवार मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे गीत सुनने को मिल रहे हैं और अभी याद आया कि कश्मीर की कली फिल्म रविवार को ही देखी थी। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि हम कमेंट्स करें या ना करें लेकिन फिर भी श्रोताओं के शानदार कमेंट्स जो पढ़ते हैं और साथ में सुनवाए जाते हैं इस प्रोग्राम में, वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है और मन आनंदित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि 70, 80 और 90 के दशक में इतवार का बेसब्री से इंतजार रहता था और उस वक्त फिल्में देखते थे टीवी पर, दूरदर्शन पर, और साथ ही विशेष काम और शाम के खाने का इंतजाम करके हम बड़े शौक से हल्के फुल्के नाश्ते के साथ फिल्म भी देखते थे। और वो जो वक्त था कि सब परिवार एक साथ बैठकर टीवी देख रहा है या एंजॉय कर रहा है, वो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत

इतने प्यारे प्यारे गीत बज रहे हैं और आज का रविवार बहुत खूबसूरत तरीके से गुजर रहा है, सुबह से लेकर अब तक। जी हाँ, और आगे भी चलता रहेगा। बने रहे विविध भारती के संग।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत आपने सुना शर्मीली फिल्म से, नीरज ने इस लिखा, एस डी बर्मन की धुन थी। और बस ये गीत यहीं तक आपको सुनवा पाएंगे क्योंकि वक्त हो चला है। जाते जाते आपके दो मैसेजेस संदेश हम पढ़ देते हैं कि एक श्रोता ने लिखा, हम आपको वचन देते हैं कि हम हमेशा विविध भारती के साथ बने रहेंगे क्योंकि विविध भारती हमारे दिलों की धड़कन है और धड़कन तो एक पल को भी नहीं बंद होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। और साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के इतवार और आज के इतवार में बहुत फर्क आ गया है। महानगर में शनिवार इतवार का मतलब है बाहर की आउटिंग करना और हमारे उस इतवार का मतलब था साथ में बैठना, घर पर बैठना। जी हाँ, फर्क तो बहुत आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे संदेशों के लिए और आप बने रहें हमारे साथ। इस प्रोग्राम से फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।

0: करते नहीं।
1: इसका मतलब ये न समझो, हम जहाँ से डर गए डर गए डर गए डर गए डर गए डर गए। मनु कवाल
0: जगो कवाल

0: यह है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में मनचाहे गीत, जिसका नाम है आपके प्यार भरे फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं और आज इस प्रोग्राम में शामिल होने को एकदम तैयार है। आज का ये गीतों का सफर आप तय करेंगे अनुराधा उपाध्याय के संग। चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ।

और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी गांव हिवरखेड़ तेलहारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार भारती पारस पायल श्वेता और उर्वी बैन ने, नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव अनीता जाधव प्रसाद जाधव बेबी सोनल ने, ग्राम खकड़ तहसील कोंच जालौं उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुजर सत्यम सिंह अंशराज एवं उनका समस्त परिवार, संबलपुर कांकेर से ज्योति ओजस्वी इशिका फागुराम यादव ने, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत कीसू दासू अर्णव आनंद सत्यम ने इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी और साथ ही आनंद

मन्नाडी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। श्री 420 फिल्म का नाम शैलेन्द्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज। इसे सुनना चाहा था गणेशपुर गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजवी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम ने। साथ ही ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार और मोहम्मद हसनैन ने इसे सुना चाहा था। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका ने। ग्राम छह गांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे ने इसे सुनना चाहा था। साथ ही सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह, हिमांशु और देवांशु गुलाटी ने इसे सुनना चाहा था और वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद ने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। पगला कहीं का फिल्म का नाम हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और इसे सुनने के लिए हमें पत्र मिले छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू के, साथ ही नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी हटौद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल ने। गुजरात मादनगर से राहुल ओजा प्रतीक ने इसी गीत की, और साथ ही दीप्ति उन्होंने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत निशु और भूपेंद्र, और शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी, पार्वती और राधा ने इसी गीत को सुनना चाहा था।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, रविन्द्र जैन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी और नरेंद्र तनेजा ने। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल दीपिका मल्होत्रा, गाव्या सुच्चा सिंह पाठक ने। रिधोरा से बाबूलाल बोराखेड़े, गोकुला और मंगेश बोराखेड़े ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था बाजार चौक पुलगांव से अब्दुल कलाम और नाजिमा अंजुम ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक और मयंक ने, साथ ही चेतन नाहटा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था जसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति और संजय चौहान ने।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में धरती फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और इसे सुनना चाहा था कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, टीडी मल्होत्रा मोहाली से जयवीर सिंह ठाकुर ने, और साथ ही शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल और अनवर ने, शहर अंबिका चौक बीड़ से जनार्दन वेद पाठक, भाग्यश्री चीयू माऊ बिट्टू और आरवी ने, मोलनपुर मंडी से कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, अंश बिट्टू और दीपक जैन ने, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद ने इस गीत को सुनना चाहा था, और साथ ही साथ जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और महेंद्र जैन ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न करते हैं।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत। यह है विविध भारती।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: ये हमारे राजगृह का प्रमदवन कैसा है?
1: अद्भुत है, सुंदर है राजकुमारी।
2: राजकुमारी पद्मावती, देखिए देखिए मेरे अंजुनी की ये शेफाली का फूल रक्त संख्या के टुकड़ों से चमक रहे हैं।
0: हाँ चेटी, अद्भुत है ये फूल, है ना अवंती के?
1: बहुत ही सुंदर है।
2: और तोड़ो?
0: नहीं नहीं, और न तोड़ो।
1: क्यों रोकती है?
0: जब आर्यपुत्र यहाँ प्रमदवन में आकर इन फूलों का विस्तार देखेंगे तब मैं उसे अपना सम्मान मानूंगी।
1: सखी, आर्यपुत्र तुम्हें बहुत प्रिय हैं।
0: नहीं जानती अवंती के, लेकिन आर्यपुत्र के बिना मैं अत्यंत उत्कंठित हो जाती हूँ। बस मुझे एक संदेह है।
1: क्या?
0: जैसे आर्यपुत्र मेरे हैं अवंती के, क्या वैसे ही वासुदत्ता के भी थे?
1: उससे भी बढ़कर।
0: तुमने कैसे जाना?
1: हाँ, यदि उनका प्रेम कम होता तो वासुदत्ता अपने आत्मियों परिजनों को यूं सहज छोड़ पाती?
0: हाँ संभव है।
2: राजकुमारी, आप महाराज उदयन से कहती क्यों नहीं कि आप भी वीणा सीखेंगे?
0: मैंने कहा था जेटी।
1: फिर क्या कहा उन्होंने?
0: कुछ नहीं, केवल दीर्घ निश्वास छोड़ वे चुप रहे।
1: ओह,
0: उस समय शायद आर्या वासुदत्ता के गुणों का स्मरण हो आया हो उन्हें।

0: Silvieta.
1: गिरे हुए बंधु जी कुसुमों और अविरल पवन से ये प्रमदवन कैसा रमणीय हो रहा है। ए? अरे इधर नहीं, इधर नहीं, उधर चले श्रीमान वत्सराज।
2: मैं आ गया मित्र वसंतक। मैंने उज्जैनी में राज कन्या वासव दत्ता को जब देखा तब मेरी अवस्था अकथनीय हो गई थी। तब काम के पांचों बाण मुझ पर पड़े, हृदय आज भी उस चोट से व्यथित है। और मित्र, अब प्रहार पर प्रहार हुआ है। यदि मदन शरों की संख्या 5 ही है तो ये छठा कहां से आ गया?
1: देवी पद्मावती, देवी पद्मावती कहां गई? देवी पद्मावती लता मंडप में तो नहीं गई? व्याघ्र चर्म से दिखने वाले, असन कुसुमों से ढके पर्वत तिलक शिलापट पर तो नहीं जा बैठी? तीव्र गंध वाले सप्त छंद वन में तो नहीं गई? अरे अरे कहीं हिरणों और पक्षियों की अनुकृति से चित्रित दारू पर्वत पर तो नहीं चली गई देवी?
0: देखिए राजकुमारी पद्मावती, सामने से महाराज उदयन चले आ रहे हैं।
3: हाँ हाँ, वही तो है चेटी। अवंती की, तुम पर पुरुष का दर्शन नहीं करती ना, तुम्हारी इसी चरित्र रक्षा के कारण मैं आर्य पुत्र का दर्शन त्याग रही हूँ। वे हमें नहीं देखे इसलिए इस माधवी लता मंडप में चले।
0: हाँ यही करें राजकुमारी।
1: अरे लगता है श्रीमती पद्मावती यहाँ आकर लौट गई।
2: कैसे जाना वसंतक?
1: इस शैफाली का गुच्छ को देखे जिसके की फूल तोड़ लिए गए।
2: वसंतक, इसी शिलातल पर बैठ हम पद्मावती की प्रतीक्षा करें।
1: बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा। पर शरद काल की ये तीखी धूप बड़ी असह्य है प्रभु। क्यों ना हम इस माधवी लता मंडप में चले।
2: अच्छा चलो।
0: अरे ये वसंतक मूर्त हमें सारा काम चौपट कर देगा, भला आप क्या करें चेटी। कहीं तो इस लता से लटके मधु चप्ते को हिलाकर आर्य पुत्र को मार्ग विरत कर दूं। हाँ हाँ ऐसे ही करो।
1: अरे बचाओ बचाओ, इन मधुकरों से, इन भ्रमरों से मेरी रक्षा करो। अरे श्रीमान आप वहीं रुके।
2: अरे अरे अरे मधुकरों को भया तो न करो वसंतक, हमारी पच्चापों से उद्विग्न हो, वे भी हमारी तरह अपनी प्रियाओं से विरहित हो जाएंगे। अतः यही बैठो।
1: जी
0: राजकुमारी पद्मावती, हम तो यहाँ बंदी हो गए।
3: लेकिन प्रसन्नता है, सामने ही आर्य पुत्र बैठे हैं।
4: आर्य पुत्र स्वस्थ है, प्रसन्न है, भाग्य की कृपा।
0: अरे आर्य अवंतिका की आंखों में ये आंसू कैसे?
4: नहीं नहीं कुछ नहीं चेटी, आंखों में काश फूलों के धूलिकण गिर पड़े, इससे आंखों में आंसू आ गए।
1: स्वामी वत्सराज उदयन, ये प्रमदवन एकदम सूना है, इसी से कुछ पूछना चाहता हूँ।
2: पूछो वसंतक।
1: आपको प्रियतर कौन, पहले की वासवदत्ता या आज की पद्मावती?
2: क्यों मुझे महासंकट में डालते हो वसंतक? मैं कुछ नहीं कह सकता।
1: मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब तो सच सच बता दें प्रभु।
2: रूपशील माधुर्य के कारण पद्मावती मुझे प्रिय है, लेकिन वासव दत्ता में मेरी आसक्ति के कारण वो मन को हर नहीं पाती। अब तुम कहो तुम्हें कौन प्रिय है?
1: मेरे लिए तो दोनों समान हैं प्रभु। देवी वासव दत्ता आदरणीय थी और देवी पद्मावती तरुणी दर्शनीय, क्रोध अहंकार रहित, मृदुभाषिणी और उदार हैं। हाँ हाँ उनमें एक गुण और अधिक है प्रभु, वे मीठे मीठे पकवान लिए पूछती रहती हैं आर्य वसंतक कहाँ गए।
5: आ रही है वसंतक।

0: कहाँ है?
1: मित्र वसंतक, मैं ये सारी बातें वासव दत्ता से कह दूंगा।
2: अब देवी वासव दत्ता कहाँ है?
0: वे तो कभी की परलोक सिधार।
3: हाँ मित्र, तुमने अपने इस परिहास से मेरा मन विक्षिप्त कर दिया। अपनी पुरानी आदत से ही ऐसी बात मुंह से निकल पड़ी। वसंतक, तुम मेरी दशा नहीं जानते। वासव दत्ता का अमूल्य अनुराग भुलाया नहीं जा सकता। उसकी याद से मेरा परिताप नित नया होता जाता है।
0: अरे अरे, आपका मुख आंसुओं से भीग गया। चलो मुंह धोने के लिए पानी लाऊं।
4: अवंती के, आरी का मुख आंसुओं से जाने क्यों भीग गया? सुनो, यही समय है, हम यहाँ से निकल चलें।
5: नहीं राजकुमारी, व्यथित पति को यूं छोड़ जाना उचित नहीं। आप यहीं ठहरें, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ।
4: हाँ, यही उचित है। देवी पद्मावती, हम आर्य के पास चलें।
5: सचमुच जाऊं?
4: हाँ जाओ पद्मावती, जाओ। वे दुखी हैं, उन्हें सांत्वना दो।
6: आरी की जय हो।
1: पद्मावती बैठो। जल ले आए वसंतक?
2: जी हाँ।
1: काशरज आंखों में पड़ जाने से मुंह आंसुओं से भीग गया।
6: अथवा किसी दुख से?
1: नहीं पद्मावती, नहीं।
7: महाराज उदयन, अपराह्न वेला हो रही है, अब आप पधारे और अपने सुहृद जनों को दर्शन दे।
1: ठीक कहा वसंतक, आओ चले।
8: मधुरी के, ओ मधुरी के, जल्दी इधर आ।
6: आई
8: मधुरी का, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है। तू जा और आर्या अवंतिका को बुला ला।
6: राजकुमारी कहाँ है?
8: उद्यान वाले समुद्र गृह में।
9: मैं आर्य वसंतक को खोजती हूँ, वे भी स्वामी को ये संदेश दे दे।

0: पद्मावती से विवाह के बाद भी मुझे वासव दत्ता की याद सताती है। वासव दत्ता मेरी प्रिया, मेरी शिष्या, जिसके वीणा स्वरों को सुन कैसा विमोहित हो जाता था मैं। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा वासव दत्ता?
1: राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है और उनके शैया समुद्र गृह में है।
2: अरे चलो वसंतक, समुद्र गृह की राह दिखाओ मुझे।
1: जी, ये रहा समुद्र गृह, आर्य पधारे।
2: पहले तुम चलो वसंतक।
1: जी। ठहरिए ठहरिए श्रीमान, अरे इस भूमि पर तो सर्प लेट रहा है।
2: मूर्ख, ये पुष्पमाला है।
1: पुष्पमाला?
2: सर्प नहीं, ये माला तोरण द्वार पर लटक रही थी और अब भूमि पर गिरी, वायु झोंकों से हिल रही है।
1: हाँ, ये तो सर्प नहीं है। देव, यहाँ शैया है, दीपक जल रहा है, एकदम शांति है। लगता है राजकुमारी यहाँ आई और चली गई।
2: नहीं वसंतक, देवी यहाँ नहीं आई। देखो ये शैया वैसी ही है, सिकुड़न तक नहीं, औषध लेपन से सिरहाना भी मैला नहीं हुआ, न मन बहलाव के लिए यहाँ कोई शोभा रची गई।
1: तो देव, उनके यहाँ आने की प्रतीक्षा करें।
2: हाँ यही ठीक है। मित्र वसंतक।
1: जी।
2: मुझे नींद आ रही है, कोई कथा कह।
1: जी ठीक है, तो देव शैया पर लेट हुंकारे भरते जाएं और सुने। हाँ तो राजन, उज्जैनी नामक एक रमणीय नगरी है।
2: क्या कहा, उज्जैनी?
1: ये कथा पसंद नहीं तो दूसरी कहूं।
2: है

0: लेकिन इसके साथ मुझे अवंतीनाथ की कन्या वासुदत्ता की याद आ रही है, जिसने उज्जैनी से प्रस्थान के समय बंधुजनों का स्मरण कर अपने आंसू मेरे हृदय देश पर बरसाए थे। वासुदत्ता, वासुदत्ता।
1: राजन, दूसरी कथा है, ब्रह्मदत्त नाम का नगर है।
0: मूर्ख, ब्रह्मदत्त राजा का नाम था।
1: हाँ।
0: नगर कांपिल्य था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले इसे याद कर लूं मैं राजन। राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, कांपिल्य राजा था नगर ब्रह्मदत्त, नगर कांपिल्य। अरे देव को तो नींद आ गई, चलो अच्छा हुआ, बड़ी सर्दी है, चलो कुछ ओढ़ने को ही ले आऊं, वरना अपने राम टिर बोल जाएंगे।
2: भाग्य कितना निठुर है, ये पद्मावती जो आर्य का विरह दुख दूर करने में सहायक होती अस्वस्थ हो गई। अरे यहाँ के सेवक कैसे असावधान हैं? पद्मावती के पास केवल जलता दीप छोड़ चले गए। अच्छा, तो इसी शैया पर पद्मावती सो रही है, चलो उसी की शैया पर बैठो। क्या क्या बात है, इस शैया पर बैठते मन मन कैसा आह्लादित हो रहा है। इसकी श्वास प्रश्वास तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लगता है स्वस्थ हो गई।
0: वासुदत्ता, वासुदत्ता।
2: अरे ये तो आर्यपुत्र है, यहाँ कैसे?
0: प्रिय,
2: अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो आर्य योगेंद्रायण और मेरी दोनों की प्रतिज्ञा निष्फल होगी, वत्स देश की राज्य प्राप्ति का स्वप्न अधूरा रह जाएगा।
0: अवंती राजपुत्री,
2: लगता है आर्यपुत्र स्वप्न में बातें कर रहे हैं। भला है यहाँ कोई नहीं, एक क्षण रुक, इन्हें देख हृदय और दृष्टि को संतुष्ट तो कर लो।
0: हाँ प्रिय, आशीष।
2: बोल रही हूँ स्वामी, बोल रही हूँ।
0: क्या तुम कुपित हो?
2: नहीं, दुखी हूँ।
0: तो अलंकार क्यों उतार दिए?
2: अलंकार पहनने से भी क्या भला होता?
0: वासुदत्ता, वासुदत्ता, प्रिय, प्रिय।
2: आर्य की स्वप्नावस्था है, यहाँ देर से बैठी हूँ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा?
0: प्रिय,
2: चलो चलने से पहले सोए आर्य पुत्र के इन पहले हाथों को ठीक कर दो। अब चलो।
0: ठहरो, ठहरो, ठहरो वासुदत्ता, ठहरो वासुदत्ता, ठहरो। अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये मेरा मनोभाव सत्य है या स्वप्न?
1: राजन जाग गए आप?
0: हाँ वसंतक, मित्र एक सुसंवाद।
1: क्या?
0: वासुदत्ता जीवित है।
1: हाँ, वासुदत्ता कहाँ, वे तो कभी के परलोक से हार गई।
0: नहीं, मुझे शैया पर सोता देख चली गई।
1: समझा समझा राजन, जब से मैंने उनकी बात कही तभी से आप देवी वासुदत्ता के विषय में सोच रहे थे, इसी से उन्हें स्वप्न में देखा होगा।
0: वसंतक, अगर वो स्वप्न था तो ना जागना ही धन्य होता, यदि ये भ्रम है तो वह सदा बना रहे।
1: समझा राजन समझा। इस राजगृह नगरी में अवंती सुंदरी नामक यक्षिणी रहती है, कहीं वो तो दिखाई नहीं दे गई?
0: नहीं नहीं नहीं, नींद से जाग मैंने उसके मुख को देखा। मुख पर बिखरी लंबी हल्के अंजन रहित नेत्र। देखो मित्र, देखो मेरी इस भुजा को देखो। स्वप्न में ही वासव दत्ता ने जिसे स्पर्श किया वहां अब भी रोमांच है।
1: राजन व्यर्थ चिंतन छोड़े, आइए चतुर्शाला चलें।
3: चलिए राजन चलिए।

0: वत्सराज उदयन की जय हो।
1: आइए कंचुकी।
2: हमारे महाराज दर्शक ने आपके लिए संदेश दिया है कि आपके शत्रु आरुणि पर आक्रमण के लिए आपके आमात्य रुम्णवान बड़ी सेना लेकर उपस्थित हैं। इसी तरह हमारा विजयनी राजदल युद्ध के लिए सन्नद्ध है। आपके शत्रु विभाजित कर दिए गए हैं। आपके गुणों से अनुरक्त आपकी प्रजा आश्वस्त है। प्रयाण के लिए सेना के पृष्ठभाग की रक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। शत्रु पराजय के सब करणी उपस्थित हैं। सेना गंगा पार कर चुकी है। वत्सों का देश प्राय आपके हाथों में है महाराज।
1: ये सुसंवाद है कंचुकी। अब मैं भयानक कर्मों में दक्ष उस आरुणि को तैरते गजाश्व और तरंग बाण वाले महासमुद्र में पकड़कर नष्ट कर दूंगा।
0: कौशाम्बी राजमहल के इस सुनहरी तोरण द्वार पर कौन प्रतिहारी नियुक्त है?
3: आर्य, मैं हूँ विजया।
0: विजया, महाराज उदयन से निवेदन कर, अवंती राज महासेन के यहाँ से रैभ्य गौत्र कंचुकी और देवी वासा दत्ता की धाय आर्य वसुधारा आए।
3: आर्य कंचुकी, इस संदेश के लिए न ये उपयुक्त स्थान है न समय।
0: क्यों?
3: आज स्वामी के पूर्व प्रासाद में कोई वीणा बजा रहा था,

0: घोषवती का स्वर, ये तो वासव दत्ता की वीणा घोषवती का स्वर लगता है। ये वीणा कहाँ भाई?
1: बजाने वाले ने कहा, नर्मदा तीर झाड़ियों में पड़ी मिली, स्वामी चाहें ले लें। जैसे ही स्वामी ने उस वीणा को अपने अंक में लिया,
0: घोषवती घोषवती, मैंने तुम्हें तो पाया, लेकिन वासव दत्ता वो कहाँ है?
1: आप सोचें, इस समय कैसे निवेदन करूं उनसे?
2: विजया जा, निवेदन कर। ये संवाद मुझे उसी से संबंधित प्रतीत होता है।
1: जाती हूँ आर्य।
3: स्वामी की जय हो। अवंतीराज महासेन के यहाँ से रैभ्य गोत्र कंचुकी और महारानी वासव दत्ता की धाय आर्या वसुधारा द्वारे उपस्थित हैं।
4: तो प्रतिहारी, पहले पद्मावती को बुलाओ।
3: जो आज्ञा प्रभु। आर्य पुत्र की जय हो।
5: मैंने संवाद सुना, मैं अपने संबंधियों की कुशल वार्ता से प्रसन्न होंगी।
4: हाँ, वासव दत्ता के स्वजन आपके भी स्वजन हैं।
5: आप मेरे समीप बैठे ही उन लोगों से मिलेंगे, मुझे देख क्या वे उदास नहीं होंगे?
4: नहीं पद्मावती, नहीं, बैठो।
3: कंचुकी और धाये द्वार पर खड़े हैं महाराज,
4: उन्हें शीघ्र लिवाला।
6: आर्य पुत्र की जय हो।
7: आर्य पुत्र की जय हो।
4: आर्य रैभ्य, मैंने जिनके साथ मैत्री कामना की, जो पृथ्वी के राजवंशों के उदयास्त के कारण हैं, वे अवंती राज महासेन सकुशल तो हैं?
6: सकुशल हैं, और आप सबके कुशलार्थी हैं।
4: उनकी मेरे लिए क्या आज्ञा है?
6: महाराज उदयन, शत्रुओं द्वारा अपहृत आपका राज्य सौभाग्य से लौट आया।
4: आर्य रैभ्य, ये सब महाराज महासेन के प्रभाव का ही परिणाम है। आज भी मैं स्मरण करता हूं, आरंभ में मैं उज्जैनी राज्य की सीमा के समीप उन्हीं की सैन्य से पराजित हुआ, बंदी बना, तो उन्हीं महासेन ने मेरा पुत्रवत पालन किया। मैंने उनकी प्रिय कन्या वासव दत्ता का हरण कर लिया, लेकिन मैं

0: मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका।
1: उसका मृत्यु संवाद सुनकर भी मेरे प्रति उनका आदर पूर्ववत है। विजय प्राप्त कर पुनः मेरे वत्स राज्य में लौट आने का कारण भी वही है। मात वसुधारा, राजमाता अंगारवती कुशल पूर्वक तो है?
2: स्वस्थ ही, आपका कुशल पूछती हैं।
1: सभी कुशल हैं, यहाँ सब कुशल है माँ, केवल केवल वासुदत्ता बस वो ही नहीं है।
2: राजन संताप न करें।
3: स्वामी धैर्य धरे, महासैन कन्या वासुदत्ता मरकर भी अमर हैं, क्योंकि आप उन्हें आज भी उसी स्नेह से स्मरण करते हैं।
1: वासुदत्ता को मैं कैसे भुला सकता हूँ?
2: राजन, राजमहिषी अंगारवती ने कहा है वासुदत्ता अब नहीं रही, किंतु मेरे और महासेन के लिए आप पुत्र गोपालक और पालक की भांति ही प्रिय है। पहले से ही मनोनीत जामाता ही, इसी विचार से आप उज्जैनी लाए गए थे, फिर बिना शिक्षा के बहाने बिना अग्नि साक्ष आपको वासुदत्ता दे दी गई थी, पर शीघ्रतावश आप बिना विवाह क्रिया के वासुदत्ता का हरण कर चले आए थे। तब हमने आपका और वासुदत्ता का चित्र बनवाकर विवाह मंगल संपन्न किया। उसी चित्र फलक को हम आपके पास भेज रहे हैं, जिसे देख आप सुखी हों।
1: देवी अंगारवती ने स्नेहपूर्ण और अनुकूल बात कही। उनका ये कथन 100 राज्यों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। अपराधी होते हुए भी हम दोनों के प्रति वे अपना स्नेह नहीं भूली।
4: आर्यपुत्र, मैं चित्र देखना चाहती हूँ।
2: ये देखिए पद्मावती जी।
4: अरे
1: देवी, क्या बात है?
4: आर्यपुत्र, आश्चर्य, देवी वासुदत्ता की इस प्रतिकृति के समान ही कोई यहाँ रहता है।
1: यहाँ?
4: हाँ आर्यपुत्र।
1: तो उसे शीघ्र बुलाएं।
4: लेकिन विवाह पूर्व किसी ब्राह्मण ने उसे अपनी भगिनी बताकर मुझे सौंपा है। ये भी कहा है उसका पति विदेश गया है, वो प्रोषित पति का है, इस कारण पर पुरुष का दर्शन नहीं करती।
1: ओह, अगर वो ब्राह्मण की भगिनी है तो कोई और है, यूं तो रूप स्वामी मिल ही जाता है।
5: स्वामी की जय हो। उज्जैनी से एक ब्राह्मण आया है, कहता है देवी के आश्रय में मैंने अपनी बहन रखी थी, मैं उसे लेने आया हूँ।
1: पद्मावती,
4: हुँ?
1: क्या ये वही ब्राह्मण तो नहीं?
4: संभव है वही हो।
1: प्रतिहारी, अंतपुर के आचरण का ध्यान रखते हुए बीच में यवनी का डाल ब्राह्मण को शीघ्र उपस्थित करो।
5: जो आज्ञा प्रभु।
1: पद्मावती, आप उस ब्राह्मण भगिनी को ले आए।
4: जी।
6: जय हो, आपकी जय हो।
1: ये स्वर परिचित सा प्रतीत होता है। ब्राह्मण, क्या आपने अपनी बहन को देवी पद्मावती के आश्रय में रखा था?
6: हाँ राजन।
1: तो शीघ्र ले आओ इनकी भगिनी को।
5: आर्यपुत्र की जय हो, धरोहर ये है।
1: धरोहर लौटा दो पद्मावती, वस्तुतः धरोहर साक्षियों के समक्ष लौटाना चाहिए। यहाँ ये रैभ्य और आर्या वसुधारा है, यही साक्षी होंगे।
2: ये क्या, ये ही तो महासेन पुत्री वासुदत्ता है।
1: मेरी प्रिया वासुदत्ता, सच अगर यही है तो देवी पद्मावती, आप वासुदत्ता को ले अंतपुर में प्रवेश करें।
6: नहीं देव, उसे अंतपुर प्रवेश नहीं कराऊं, वो मेरी भगिनी है। राजन, आप भरत कुलोत्पन्न है, विनीत है, ज्ञानवान, पवित्रो राजधर्म के आचार्य, इस तरह मेरी भगिनी का हरण न करें।
1: अच्छा, तब रूप सादृश्य देखें। प्रतिहारी, ये बीच की यवनी का हटा दो।
6: स्वामी की जय।
1: महामात्य,
4: आर्यपुत्र की जय।
1: वासुदत्ता, अरे अरे, ये तो हमारे महाअमात्य यौगंध रायण ही है, और ये महासेन पुत्री वासुदत्ता, ये सत्य है या स्वप्न?
6: महाराज उदयन, देवी को हर लेने का अपराधी मैं हूँ, स्वामी रक्षा करें।
1: आप रक्षित हैं महाअमात्य, आपके यत्नों से ही हम डूबतों की रक्षा हुई है।
4: तो ये अवंती का ही आर्या वासुदत्ता है।
7: आर्य, आपके साथ सखी भाव से व्यवहार करते, अगर शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ हो तो क्षमा करें।
8: उठो सुहागिन पद्मावती, जो स्वयं दूसरों की हित सेवा में लगा रहा उससे भला अपराध कैसा।
1: मित्र यौगंधरायण, बताओ देवी वासुदत्ता को यूं हटा देने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था?
6: कौशाम्बी की रक्षा कर सकूं, मित्र राज्यों की सहायता जुटा सकूं, ताकि आपको विजय लाभ हो सके राजन।
1: और उसे पद्मावती के आश्रय में रखने का क्या तात्पर्य?
6: राजन, इसीलिए कि पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने कहा था, देवी पद्मावती आपकी रानी होगी और उसी के साथ देवी वासवदत्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगी।
1: क्या मंत्री रुमणवान भी इसे जानता था?
6: हाँ राजन, सभी जानते थे।
1: ओ
6: महाराज उदयन, रेभ्य और आर्या वसुधारा को आज ही देवी वासवदत्ता की कुशलता की सूचना के लिए उज्जैनी भेज दे।
1: नहीं, हम सभी देवी पद्मावती के साथ उज्जैनी चलेंगे और हमारे साथ वासवदत्ता भी होंगी।
6: हाँ स्वामी, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई है।
7: और मेरा स्वप्न।

तो ये था नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है श्याम रंग से कि श्याम रंग में पिया मोरी रंग दे चुनरिया। पिया कौन है? पिया भी श्याम है। तो यहां शब्दों